0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: You are listening to Rainbow FM Kochi.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।

0: आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: टर्न ऑफ द गुड वाइब्स। दिस इज रेनबो फ्रॉम कोची 107.5। म्यूजिकली योर्स।
2: रेनबो FM presents Triple Treat. Three songs back to back. Enjoy the tracks and stay tuned. 3, 2, 1, let's go! Triple Treat.

0: क्या?
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और

0: और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने,
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
0: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
1: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
0: जी।
1: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
0: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
1: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
0: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
1: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है।
0: जी,
1: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
0: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
1: जी,
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
0: जी,
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
0: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पटिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
3: आह, क्या बात है
4: मैम।
3: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
2: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और

0: अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
3: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमार।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश।

0: खुश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ?

0: वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।

0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: नमस्कार। कैसी हो चंचल?
2: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
1: खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है,

0: उसमें ये हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं, और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ।
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं।
1: हाँ।
0: इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं, और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते
1: जी।
0: हैं। कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं, और ये है कि उनका इंतजार होता है।
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। हाँ। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो।
1: तो
0: मतलब
1: हम
0: हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं
1: जी
0: जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल
1: बिल्कुल
0: दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज़ हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो हैं, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहाँ एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया।
0: बिल्कुल
1: तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान हैं।
0: हाँ, बिल्कुल। जब पहले जब हमें, अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था, तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे, या फिर फोन पर बात किया करते थे, या एसटीडी पर जाकर हम जो है
1: हाँ,
0: वहां पर बात किया करते
1: घंटों
0: थे,
1: लंबी लाइन में लगा करते
0: है
1: थे।
0: ना, लगे
1: हाँ
0: रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें
1: जी
0: बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो अब बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं,
1: हाँ
0: और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते
1: बिल्कुल सही
0: हैं।
1: कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नज़रें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहाँ भी नज़रें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं, भाई किसी
1: हाँ
0: का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल
1: मतलब
0: इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है।
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए,
0: हाँ
1: ऐसा लगने लगता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते, तो लगता है अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए,
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना।
1: जी
0: तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है, या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहां मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे
0: घूम
1: होते
0: रहे
1: हैं।
0: होते हैं और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में, लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो,
1: जी
0: बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोककर एक गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ

0: हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए
1: हाँ
0: हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
1: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं
0: हाँ,
1: जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
0: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई है।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहाँ ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहाँ ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहाँ। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना, कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने

0: आपको मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा,
1: हाँ
0: हम सब बैठकर बतियाते थे
1: हाँ
0: हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है। इस पर हमें बकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज
1: जी
0: शाम हमें क्या मिलने वाला है,
1: जी
0: लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो
0: तो
1: अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए
0: हाँ बिल्कुल, वो ध्यान तो चला गया है और
1: जी।
0: सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ।

0: बिल्कुल
1: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
0: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
1: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
0: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
1: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
0: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
1: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: दाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन

0: भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहाँ काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं, और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहाँ भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ हैं कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है, इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है,
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें। और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीज़ें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।

0: सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम, और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है
1: एक और
0: ना।
1: बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है,
0: बिल्कुल
1: कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है,
0: हाँ,
1: जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं
0: तो हम
1: तो
0: उसके
1: ताजा तेल
0: हाँ दोबारा
1: इस्तेमाल
0: उस तेल
1: करें।
0: का इस्तेमाल करने से बचते हैं,
1: जी
0: है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही
1: जी
0: खाना पसंद करती है, और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है,
1: हाँ
0: हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना।
1: जी
0: एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी हमारी अच्छी सेहत बनाता है, और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है, तो ये जो पिज़्ज़ा
0: हाँ,
1: बर्गर ये चीज़ें हम घर में।
0: मोमोज, ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है, और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया
1: और
0: है।
1: बच्चे इन चीज़ों से बड़े
0: हाँ
1: आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाज़ार में मोमोज बनते हैं ना वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियाँ हैं उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती हैं, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं, तो आप घर में बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फ़ायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाएं,
1: जी
0: और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और
0: बिल्कुल
1: सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: सुनाइए।

0: तो चंचल असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: वही।
1: ये एक
0: हाँ
1: ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में, मतलब आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, और जब
1: हाँ
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है
1: जी
0: कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं।

0: और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना कि हम कॉपी में क्या
1: उदाहरण देकर
0: करते थे, उदाहरण
1: समझाइए।
0: देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे। यानी
1: हाँ,
0: कि
1: बिल्कुल।
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो अच्छा। प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन

0: उसमें मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था.
1: जी
0: दे लाइक इट, दे शॉर्टलिस्टेड. कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई ज्वाइन द थिंग. मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
0: जाके वहां पे मैं गया. हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था. मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी. और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था,
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा था.
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने
0: हाँ, उनका एक
1: का,
0: अलग तरीका है.
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहां पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था.
1: अच्छा।
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे. अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है,
1: जी
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी. ये तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे. बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया,
1: जी
0: उनके लिए सब सेम थे.
1: सबसे
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा।
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे. मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार.
1: जी जी
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है
1: ओह
0: ना.
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते
0: आप
1: हैं
0: क्या
1: इस रोल
0: सोचते.
1: के बारे में?
0: हाँ,
1: क्या बहुत बड़ी बात है।
0: बहुत बड़ी बात है.
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा. और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी. मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की,
1: जी
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ
1: हाँ हाँ हाँ
0: कि सर आई फील इफ आई डू दिस. तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ.
1: जी
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा।
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक. वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है. ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल.
1: जी
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था. एवरीथिंग इज एट स्टेक.
1: हाँ
0: अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं.
1: अच्छा।
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए. तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड. तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक,
1: अच्छा,
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा. तो वहां पे वो फील आया. मैंने बोला ये करता हूं. तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो लेकिन नहीं, नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे. मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना. नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे. लाइक ठीक है छोड़ यार. मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए.
1: हाँ।
0: मैंने बोला सर एक पॉइंट है. बोले हाँ बोलो. मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है. उन्होंने बोल के देखा. एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है,
1: जी जी
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप.
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बड़ी बोला गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म.
1: यस यस।
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए. आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे. आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है,
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है.
1: जी जी जी
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ.
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे. मैं
1: हाँ।
0: उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ.
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: बहुत
1: होता है।
0: जरूरी है.
1: हाँ
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ.
1: जी
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपके प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी.
1: अच्छा।
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं.
1: अच्छा।
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं. और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती कर दो है कि, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए.
1: हाँ।
0: थोड़ा सा इमोशनल रहा है
1: वो महात्मा बोल रहा है, मगर
0: हाँ, अब तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है.
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली अरे करना यार काइंड ऑफ तो, लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा. अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो.
1: हाँ।
0: थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो

0: फिक्शन है,
1: हाँ
0: ठीक है, ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो बापू, पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राज जी को बोला, सेट पे आए, वो जब सीन करना था, हाँ हाँ चलो चलो। मैंने राज जी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है बापू। कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा, और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। सो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा
1: हाँ हाँ
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो
1: जी
0: विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा,
0: तो विक्रम मराठी के में काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है
0: बड़ा नाम है, शोज
1: जी।
0: करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म
1: अच्छा
0: थी,
1: अच्छा
0: तो उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया था नागपुर, और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
1: हाँ
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए। आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा,
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ, और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था, तो मैं वहाँ पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। मैं गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।
2: दो

0: दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: होती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम
0: कॉलेज
1: किया।
0: के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: वेरी
0: है,
1: नाइस।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में, मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो
0: पढ़वाते
1: शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर दे के बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो
0: है
1: ये छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो मैं
0: जी
1: उनसे सीखा।
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं, परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं,
0: जी
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं है।
1: नहीं आएगा, सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम दे जाती है
0: जी जी जी जी और उसका जो
1: तुरंत
0: भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव तुरंत आना है।
1: तुरंत। यू फील सो गुड कि
0: हाँ
1: जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
0: जी
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
0: जी
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और
0: हाँ
1: मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे में छः छः, दस दस, पंद्रह पंद्रह लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। तो
0: जी
1: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है, जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल
1: तो दैट दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी जी

0: अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे, तो उनके सेटआउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा।
1: होगा।
0: तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे? हाँ
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान
0: हाँ
1: मैं जब नागपुर में था
0: जी
1: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खंते,
0: जी
1: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो
0: हाँ
1: भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ
0: हाँ
1: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए,
0: अच्छा
1: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
0: अच्छा
1: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
0: अच्छा
1: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: लाइट कॉमेडी है उस
0: तो ये
1: टाइप
0: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
1: का। हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
0: हाँ
1: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के
0: जी
1: साथ, लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
0: जी
1: जो
0: जी
1: शायद उच्च और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
0: अच्छा
1: IPC 324, और वो जरूर बगल में। पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
0: जी
1: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
0: हाँ
1: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है,
0: जी जी
1: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
0: ओह क्या
1: या
0: बात है।
1: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
0: जी
1: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे गमा या
0: अच्छा
1: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया,
0: जी
1: और
0: जी
1: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
0: चलिए
1: हालांकि
0: इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
0: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगा है, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? ही सेड, नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे।
0: हाँ
1: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
0: अच्छा
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं,
0: बिल्कुल
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
0: हाँ
1: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
0: जी जी जी
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे। बट
0: अच्छा
1: रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी जी
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
0: जी
1: प्रोजेक्ट मेरे
0: जी
1: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी,
0: अच्छा
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा
0: अच्छा
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा
1: और कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं
0: हाँ
1: हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो,
0: जी।
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
0: अच्छा
1: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
0: हाँ
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा, गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है, वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन,
0: कई
1: तो
0: शेड्स हो सकते
1: कई
0: हैं
1: शेड्स हो सकते हैं।
0: जी।
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है, उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे निगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
0: अच्छा
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी, जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था,
0: हाँ
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू
0: जी
1: स्टोरी थी,
0: जी जी
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है,
0: ओह
1: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था। लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था,
0: जी
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। तो
0: अच्छा
1: बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
0: जी
1: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स, और

0: वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल.
1: अच्छा,
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था. बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही.
1: जी जी जी वे. क्या बात है. कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव. जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो. लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं.
1: जी,
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही.
1: हाँ हाँ, मकरंद देशपांडे,
0: मकरंद जी थे उसमें.
1: हाँ, वो फिल्म आया गया.
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया और बहुत ही खूबसूरत है. उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं और ये गाना चल रहा है. और अभी बारिश आने ही वाली है.
1: हाँ.
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन. और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो.
1: हाँ.
0: और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो.
1: क्या बात है. चलिए सुनते हैं यही गीत.
0: जी.

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग-अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं? आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी

0: से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
1: अच्छा
0: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
1: जी जी
0: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
1: अच्छा
0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर। हम, जैसे मैंने आपको बताया, IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई,
1: जी
0: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे।
1: जी
0: और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर।
1: जी
0: मैंने वागले के बाद में, अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है,
1: जी
0: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा
1: और
0: किरदार।
1: एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
0: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है,
1: जी
0: बिकॉज दायरे ओटीटी अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी,
1: जी
0: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था,
1: अच्छा
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
1: ओहो क्या बात।
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से,
1: ओह
0: हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
1: वाह वाह
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना
1: यही
0: ही
1: गाना सुन
0: बहुत
1: लें फिर?
0: एप्ट होगा कि
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल
0: जब जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जी जान से लड़ते हैं,
1: जी
0: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो आपको भी मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू
0: वो भी, दुर्भावनाएं जो होती हैं
1: दुर्भावना
0: वो भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है,
0: जी
1: आपकी
0: जी
1: फैमिली होती है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे
0: जी
1: आर देयर टू हेल्प मी।
0: जी
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल।
2: विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है,
1: जी
2: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए।
2: हैं? जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है, ये
2: हाँ,
1: किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है,
2: अच्छा,
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
2: हाँ,
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
2: जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जुड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
2: जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
2: हाँ,
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSD, FTI, ये सब चीजें हमें पता नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
2: जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
2: हाँ,
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ।
2: जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है,
2: हाँ,
1: जो कि दूर से देख के ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
2: वाह,

0: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मतलब
1: जी
0: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला एकलव्य वाला जो है वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
1: जी
0: कि
1: जी
0: आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
1: सीखने की जो ये प्रक्रिया है इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहां इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
1: हाँ
0: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे। ये
1: हाँ
0: मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: जी
1: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है उसमें आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग, सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है,
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अभी यहां पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से कम राह के पत्थर तो हटा देते। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में,
0: हाँ,
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था कलाकार को कला

0: खाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का।
1: जी
0: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
1: वाह
0: बतौर कलाकार।
1: वाह वाह,
0: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल, उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कशिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
1: जी
0: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
1: जी
0: डायरेक्टर,
1: जी
0: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो
1: हाँ
0: हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊँ कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए, और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास समय है, जो
1: जी
0: गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो,
1: जी जी जी
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे,
1: क्या बात
0: तो ये
1: है,
0: मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं,
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं।
1: ओह क्या बात
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये हमने
1: हाँ
0: रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि ये मैं
1: जी
0: कंटिन्यू
1: जी
0: करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो
1: अच्छा
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ निगेटिव सोच वाली बात नहीं है,
1: हाँ,
0: पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो
1: जी
0: दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कांटेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी,
1: अच्छा
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे
1: ओके
0: साथ ही है।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा
1: जी जी
0: कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक
1: निश्चित रूप
0: योगदान।
1: से, और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं।
0: धन्यवाद।
1: और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी
0: कि लोग यहां पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, कि
1: हाँ
0: आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो
1: हाँ
0: और सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका करेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ
0: तो
1: ना, आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व
0: इम्पोर्टेंस,
1: नहीं है।
0: महत्व नहीं है।
1: ओह
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम
0: लगे कि विपुल
1: किया
0: देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या बात।
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
1: वाह
0: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे
0: हाँ
1: कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरके, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है सुर में शाम में। आज की शाम सिर्फ गानों की शाम नहीं है, ये यादों की महफिल है। एक ऐसा दौर जब कैसेट रिवेन होती थी, रेडियो का इंतजार होता था और हर गीत किसी न किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाता था। कुछ गीत मोहब्बत के थे, कुछ जुदाई के, कुछ उम्मीद के और कुछ बस दिल को सुकून देने के। तो आइए वक्त की घड़ी को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और शुरू करते हैं सुरों का सफर, सुरमई शाम विपुल मुरली के साथ। कभी कभी कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जगदीश सिंह की आवाज में ये गजल आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी पहली बार लगी थी। पेश है हो।

आप सुन रहे हैं सुरमई शाम रेनबो एफएम कुची 107.5। कभी कभी दो दिलों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे ना शब्दों की जरूरत होती है ना किसी पहचान की, बस एक एहसास होता है, खामोश, गहरा और बहुत खूबसूरत। 1981 के फिल्म एक दूजे के लिए में कमल हासन और रेती अग्निहोत्री पर फिल्माया गया लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों से सजा एक यादगार नगमा।

कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वो बस दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए होते हैं, और फिर एक पल

0: ऐसा आता है जब इंसान खुद से पूछ बैठता है, ये रास्ते हमें कहाँ ले जाए, ये एहसास हमें कहाँ ले आए और ये कहाँ आगे हम। सिलसिला फिल्म से एक बहुत खूबसूरत नगमा, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी के संगीत, लता मंगेशकर की मधुर आवाज और अमिताभ बच्चन की दिलकश शायरी।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

जिंदगी से शिकायत भी होती है और उसी जिंदगी से मोहब्बत भी। हर दिल को चू लेने वाला गीत, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। 1983 റിലീസ് ചെയ്ത മാസൂം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണ്.

आप सुन रहे हैं सुरमई शाम रेनबो एफएम कुची 107.5। 80s के आखिरी सालों में एक नई प्रेम कहानी ने हर दिल जीत लिया। वो फिल्म है मैंने प्यार किया। सुनिए उस फिल्म का एक गाना।

वो गीत जिसके साथ हम इस खूबसूरत सफर को एक मुस्कुराहट के साथ अंजाम देंगे। सुनिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026